फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 19 after 8 o'clock.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।

0: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत. चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: All right, let's have a listen to this trio, shall we? We had three peeps on this one. We had Ajay Devgan in person and trying to be, like, pretending to be the person on the phone as well. Amitabh Bachchan, of course, and Aishwarya Rai.
1: आप मुझे पराया समझते हैं?
2: अरे मैंने कैसी बातें कर रहे हो तुम?
1: एक लड़का आपको परेशान कर रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
3: हाँ, राजा उसे दो मिनट में ठीक कर देगा। क्यों?
1: अगर उसका फोन हो तो मेरी बात कराइएगा।
4: हेलो।
1: तो आप लोगों से मेरी शिकायतें करते फिरते हैं?
2: ए, तुम्हें कैसे मालूम
1: हुआ? मुझे दीजिए। हेलो, कौन है बे? हाँ ठीक है ठीक है।
2: क्या हुआ?
1: आप घबराइए नहीं, कोमल को क्लासेस छोड़ने मैं ही जाऊंगा।
3: गुड आइडिया भैया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
4: अरे भाई कैसे फिक्र ना करें, बड़ी घबराहट हो रही है।
1: मैं हूँ ना, घबराइए नहीं।
3: बाय भैया।

0: time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: Time now is 6:23. Good evening.
2: Listener's Choice, brought to you by Star Plus, Star Gold and Star Bharat.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत। चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।